प्यारे गुरुदेव, सच्चे पातशाह, सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, गौड़ी चेती महला पहला दा ए शब्द जो आप जी ने श्रवण किया है, इस शब्द के द्वारा साड़ी जिंदगी दा जो एक सफर है अते ओ सफर दी मंजिल नूं असीं जो खो चुके हां, उस दी बाबत सानू महाराज एक बड़ी तकड़ी जोल्ट दे के सानू वापस जगा रहे हैं। सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज एक पंक्ति दे विच बयान करते हैं कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। वो जीवन नू एक यात्रा आखते हैं, अते आखते हैं कि ए सफल हो गई है। इमेजिन करो कि वो किस किस्म की थ्रिल होएगी, किस किस्म का वो प्लेजर होएगा, किस किस्म की स्टेट ऑफ माइंड होएगी जिस दे विच एक चेतना ए अपने जीवन च खुद आख सके, उसनू जी सके, उसनू इम्बाइब कर सके कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। हाउ मैनी ऑफ अस कैन क्लेम दिस कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। हाउ मैनी इनफैक्ट सानू तो यह भी नहीं पता कि जीवन की कोई यात्रा भी है। सफल होना तो बहुत दूर की गल, सानू यह भी नहीं पता कि असी अपने जीवन की यात्रा च जा किधर नू रहे, मंजिल वल नू या मंजिल तो दूर। बाबा जी ने अपनी बाणी दे विच एक पंक्ति उच्चारण की है जिथे वो आखते हैं असी मंजिल दे करीब तकी जाना, असी मंजिल तो बहुत ज्यादा डिस्टेंट हो गए हैं, बहुत ज्यादा दूर चले गए हैं। पंक्ति सुन वाली है, कहते हैं साकत नर प्राणी सद भूखे, नित भूखन भूख करीजे, तावत ताए तावे प्रीत माया, लख कोसन को विथ दीजे। कहते यात्रा सफल ते की करनी, यात्रा सफल उदो हुंदी है जदों यात्रा दी जो डेस्टिनेशन है उत्थे पहुंच जाया जाए, उदों जो यात्रा कंप्लीट हो जाती है, सफल हो जाती है। पर जे यात्रा नालों उसकी मंजिल नालों उसके डेस्टिनेशन नालों जो पाड़ है, गैप है, डिस्टेंस है, दूरी है, वधदी ही जाए, वधदी ही जाए, वधदी ही जाए, इसका अर्थ यह होया कि यात्रियों नूं यह नहीं पता कि वह जा किधर नूं रहा है। बाबा जी ने बाणी दे विच एक जगह आख्या है साडे मुतलक कि तुहाडी हालत यह है कि तुहानूं यह पता नहीं तुसीं किधरों आ रहे हो और किधर नू जा रहे हो, बस ए आख रहे हो आई एम वेरी बिजी, आई डू नॉट हैव टाइम। कोई पूछे ते कर की रहे हो, दैट आई डोंट नो। जा किधर रहे हो, दैट आई डोंट नो, बट आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। किधर जा रहे हो इसका पता नहीं, किधरों आ रहे हो इसका कोई पता नहीं,
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

चार जकारे और छड़ने हैं, और जिस तरह सूरमे जंग विच जोश के नाल अगे वधदे हुए जकारे छड़दे हैं, इस तरह ही सारिया ने हाथ खड़े करके चढ़दी कला विच जकारा छड़ना है, ताकि यह साड़ी गूंज कलगियां वाले दे चरणा तक पहुंचे। पाकिस्तान दे नाल जिस वेले 1972 की लड़ाई लगी तो फौजी जिहड़े सन पिछा हटे, तो उस वक्त एक हिंदू कैप्टन ने भजदे हुए फौजियों नूं यह जकारा गजा के वंगार पाई सी कि कलगियां वाले का जकारा सुनो और वापस परतो अपनी चौंकी ते। और यह हकीकत है कि वह जिहड़ा जकारा हिंदू कैप्टन ने छड्डिया उस नूं सुन के भजदे हुए फौजी फिर वापस आए और इस चौंकी ते आके फिर हिंदुस्तान की फौज ने कब्जा किया। आओ ये कलगियां वाले की बख्शिश की हुई नाद ये जकारा सारे रल के आपां गजाईए।

दो चीजां ने, एक चंगियाई एक बुरियाई। चंगियाईयां कठियां करनियां होन तां कुछ कठिनाइयां दा सामना करना पैंदा है, चंगियाईयां मिलदियां बड़ियां औखियां ने, बुरियाईयां कठियां करनियां होन तुहानू दूर नहीं जाना पएगा, तुहाडे कदमां दे नाल ही बुरियाईयां हन। चंगियाईयां नू इकत्र करन वास्ते तुहानू बहुत सारा जिंदगी दा लंबा सफर करना पएगा। तां बुरियाईयां तां बिल्कुल नाल ने, जदों मर्जी कठियां कर लो, हसूर ने कहना कि बुरे काम को उठ खलोया, नाम की बेला पै पै सोया। ते जिस ते पल्ले चंगियाईयां होन उदे कोल सिदक आ जांदा है, ते कई वार अकाल पुरख उदे सिदक दी परख भी करदा है। एक वार रसना पवित्र करो ते आखो प्यार नाल सतनाम श्री वाहिगुरु। जिन्ना नहीं आख्या एक बारी फिर आखो प्यार नाल सतनाम श्री। सिदक दी परख है ना, मेरी पीरी दे मालिक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जागदी जोत दो तलवारां पहन के बहुत मिठा बोलदे सन, हजूर संगतां नूं उपदेश दे रहे ने। बहुत सारियां संगतां दर्शन करदियां ने, ते जिहड़ा भी दर्शन करदा है होवे सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों झट्टी है, ते सारे पढ़ो तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कट्टी। जिथे होर सिख सेवा करदे ने उथे एक सिख जिसका नाम भाई हरपाल है, वो भी सेवा करता है। सेवा करदिया करदिया अज कन्ना विच एक आवाज आई,

संसार दे अंदर बोलना है पर गुरु की मत द्वारा। हजूर गरीब नवाज साहब सचे पातशाह ने बड़ा सुंदर फरमान कीता है।

0: बारू भीत बनाई रचपत रत नहीं दिन जा तैसे ही सुमाया के उज्जो कहां दवा
1: अजू समझ

राग गौड़ी माला विच ऋषभ गंधार धैवत सुर कोमल अते बाकी सुर शुद्ध लगदे हन। इस दी जाति संपूर्ण वादी धैवत संवादी ऋषभ अते समा राग दा पहला पैर है। इस राग विच पाया लाल रतन मन पाया शब्द दा गायन कर रहे हन प्रोफेसर करतार सिंह।